0: एक तो इसकत की ईटा में एक एक तो इसकत की ईटा में एक एक तो इसकत की ईटा में एक पत्सो सोक आग नमों बासी ए वो से ए नकब इया का ए मुआ
1: You know,